नानक होआ परस सगल निस्तारे अष्टपति। मिथ्या नाही रसना परसमान में प्रीत नरंजन दस, पर त्रया रोपना पेखे नेत्र साल किटर संत संगेत। करना सुने कहूं कि निंदा सत्य जने आप को मंदा, गुर प्रसाद विख्या पर हरि मन की वासना मन से डर है। इंद्री जे पंच दोते रहत ना कोट मधे को सा परस, वैष्णव सज सो परसो प्रसन्न विष्णु की माँ ते हुए पेन। कर्म कर तो मैंने करो तिस वैष्णव का निर्मल धर्म, काहू फल की इच्छा नहीं बादशाह की फल की तन संग्रा चैन। मंत्र सुन गोपाल सौ प्रहो कृपाल, आप दृढ़ नाम जपावे नानक वैष्णव परम गल पावे। भगवती पवन पवतकार सत्याग दुष्ट गासम, मंत्र विंस सगला परम कर पूजा सल पार्वम। सात संग पापा मल खो वह सत भगवती की माँ तू तुम हो वह, पवत की टाल करे नीत मंत्र विष्णु प्रीत। हर के चरण हृदय बसावे नानक ऐसा पवती पवन को पावे। सो पंडित जो मन प्रभु दे राम नवा तुम सुद, राम नाम सारस पीवे पंडित कह दे जा जीवे। हर की कथा हृदय बसावे सो पंडित फिर जो न आवे, वेद प्राण स्मृत भुजे मो सुख में जाने असुर। चौवरना को दे उपदेश नान कुछ पंडित को सदा दे, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौवरना में जपे को नाम। जो जो जपे तिसकी

सुमाटी तैसा मृत तैसी बेखाटी तैसा मान तैसा विमान तैसा रंग तैसा राजान जो हृता ऐसा ही जो तुनान को पुर कैया जीवन मुक्त पार बम के सलेठा उंजते का रखे तैसा तिन्ना आपे कण कर जो प्रपा

कई कोर कृपण कठोर कई कोर अफिगा तम निकोर कई कोर पर दर को है कई कोर पर दुख न कर है कई कोट माया श्रमा है कई कोट प्रदेश प्रमाए जिज लाओ तितर नान करते की जाने करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर्पो पाए कई कोट पाथर वृख निप जाए कई कोट पवन पानी बैसंतर कई कोट देश भूमंडल कई कोट ससियर सुर नखत्र कई कोट देवता इंद्र सरशतर सब समोरी अपने सुतारे नान जज पावे तेत निस्तार कई कोट राजस तामस सात कई कोट वेद प्रसिमृता शास्त्र कई कोट कीर्तन समुद्र कई कोट नाना प्रकार जन कई कोट किए चर जीवे कई कोट गिरिमेर स्वर्ण थीवे कई कोट जाकर प्रसार कई कोट भूत प्रेस होकर मृगात सब ते नेरा सो ते दूर नान का फलिपुत रया परपूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरसुर्ग निवासी कई कोट जन्म है जीव है मर है कई कोट बहुत जोनी फिर है कई कोट बैठते खाए कई कोट कहले थक पाए कई कोट किए धनवंत कई कोट माया में चिन्ह जय जय पाणा तय तय राखे नान सबके प्रभु कह हाथे कई कोट पह बैरागी राम नाम संत लिवलागी कई कोट प्रभु को खोजनते आत्म पार्वम लहनते कई कोट दसम प्रत्यातन को मिलियो प्रभु अविनाश कई कोट मांग है सत्संग कई पार्वम तन लागा रंग जिनको होया सो प्रसन्न नान ते जन सदा तन धन कई कोट खानी अरखंड कई कोट आकाश भ्रमण कई कोट होया अवतार कई जग की नो विस्तार कई बार पसरे पसार सदा सदा एक एक अंकार कई कोट कीने बहुपात प्रत प्रम सुमात ताका अंत न जाने कोई आपे आना न प्रसोय कई कोट पार्वन के दातनो तातम प्रकाश कई कोट तत्के बेते सा निहारे को नेतरे कई कोट नव रस पी वही अमर पैसा सदा।

भाव लश्कर मान खो पर करयास पल पीतता का होए विनाश सत आव जाने बलवंत खेर में होए जाए पसमन किसी न बदे आप अहंकारी धर्म राय तस्करे खुआरी।

हम कूकर तेरे दरबार पौके आगे बदन पसार रहाओ। पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक अब तो मिटिया ना जाई, तेरे द्वारे तुन सहज की माथे मेरे दगाई। दागे होए सो रन में जूझै बिन दागे पग जाई, साधु होए सो भगत पछाने हर ले खजाने पाई। कोठरे में कोठरी परम कोठी बिचार, गुरदीनी बस्त कबीर कौ ले वो बस्त समार। कबीर दी संसार कौ लीनी जिस मस्तक पाग, अमृत रस जन पाया थिरता का सुहाग। जेह मुख बेद गायत्री बिकसै, जेह मुख बेद गायत्री निकसै, सो क्यों ब्राह्मण बिसर करै। जा कह पाए जगत सब लागै, सो क्यों पंडित हर ना कह। काहे मेरे बामन हर ना कह, राम ना बोलै पांडे दोजक परै। रहाओ आपन ऊंच नीच कर भोजन, हठे कर्म कर उधर भरै। चौदस अमावस रच रच मांगै, कर दीपक लै कूपरै। तू ब्राह्मण मैं कासिक जुलहा, मोहे तोहे बराबरी कैसे कह बनै। रा हमरे राम नाम कहे उबरे, बेद भरोसे पांडे डू मरै। तरवर एक अनंत डार साखा, पोह पोह पत्र रस भरिया। यह अमृत की बाड़ी है रे, तिन हर पूरे करिया। जानी जानी रे राजा राम की कहानी, अंतर ज्योत राम परगासा, गुरमुख बिर लै जानी रहाओ। पावर एक पोह परस बीदा, बारे ले उर तरिया। सोरे मदे पवन चकोरिया, आकाशे फरफरिया। सहज सुन एक बिरवा उपजया, धरती जल हर सोखिया। कह कबीर हों ताका सेवक, जिने हो बिरवा देखिया। मुंद्रा मोहन दया कर चोली, पत्र का करो बिचार रे। ए खिंथा हो तन सीओ अपना, नाम करो आधार रे। ऐसा जोग कमावो जोगी, जप तप संजम गुरमुख भोगी। रहाओ बुद्ध विभूत चढ़ाओ अपनी, सिंगी सुरत मिलाई। कर बैराग फिरो तन नगरी, मन की किंगरी बजाई। पंच तत् लै हृदय रखो, रह निरालम ताड़ी। कहत कबीर सुनोरे संतो, धर्म दया कर बाड़ी। कवन काज सिरजे जग पीतर, जन्म कवन फल पाया। पावनिद तरन तारण चिंता मन, एक निमख नायो मन लाया। गोविंद हम ऐसे अपराधी, जिन प्रभ जीओ पिंड था दिया। जिसकी पाओ भक्त ने साधी रहाओ। पारतानो पारतानो पारती निंदा, पर अपवाद ना छूटै। आवागमन होत है फुन फुन, एहो प्रसंग ना टूटै। जेह कर कथा हो त्यार संतन, एक निमख ना कीनो मैं फेरा। लंपट चोर दूत मतवारे, तिन संसदा बसेरा। काम क्रोध माया मद मत्सर, ए संपै मोह माही। दया धर्म यार गुर की सेवा, ए सुपनंतर नाही। दीन दयाल कृपाल दमोदर, भगत वछर पैहारी। कहत कबीर पीर जन राखो, हर सेवा करो तुम्हारी। जेह सिमरन होए मुक्त द्वार, जाहे बैकुंठ नहीं संसार। निरपौ कै कर बजावै तूर, अनहद बजै सदा भरपूर। ऐसा सिमरन कर मन माहे, बिन सिमरन मुक्त कत ना।

जे सिमरन करै तू केल, दीपक बांध धरियो बिनतेल, सो दीपक अमरक संसार, काम क्रोध बेकाढ़ी ले मार। जे सिमरन तेरी गत होए, सो सिमरन रख कंठ पर होए, सो सिमरन कर नहीं राख उतार, गुरप्रसादी उतरै पार। जे सिमरन

बाद मेरे मानो जप अहनस नाम हरे कोट कोट दोख भव कीने सब पर हर पास धरे रहाओ हर हर नाम जप आराध्य सेवक पाए खरे किल विख दोख गए सब निकर ज्यों पानी मैल हरे खिन खिन नर नारायण गावै मुख बोले नर नर हरे पंच दोख असाध नगर मैं एक खिन पल दूर करे वडभागी हर नाम ते आवै हर के भगत हरे तिनकी संगत देह प्रभ जाचौ मैं मूड मुग्ध निस्तरे किरपा किरपा धार जग जीवन रख ले वो शरण परे नानक जन तुमरी शरण आई हर राखो लाज हरे नट महला चौथा राम जप जानो रामे नाम रले राम नाम जपयो गुरबचनी हर तारी हर कृपले रहाओ हर हर अगमया गोचर स्वामी जन जप मिलो सलल सलले हर के संत मिल राम रस पाया हम जन कै बल बलले परखोत्म हर नाम जन गायो सब दालद दुख दलले विच देही दोख असाध पंच धातु हर किए खिन परले हर के संत मन प्रीत लगाई जो देखे सस कमले उनमें कान कान कान हर गरजे मन बिकसे मोर मुरले हमरे स्वामी लोच हम लाई हम जीवे देख हर मिले जन नानक हर अमल हर लाए हर मेलो अनद भले नट महला चौथा मेरे मन जप हर हर नाम सखे गुर प्रसादी हर नाम ते आयो हम सतगुर चरण पखे रहाओ उत्तम जगन्नाथ जगदीशरो हम पापी शरण रखे तुम वड पुरख दीन दुख भंजनो हर दियो नाम मुखे हर गुणि ऊच नीच हम गाए गुर सतगुर संग सखे ज्यो चंदन संग बसे निम बिरखा गुण चंदन के बसखे हमरे अवगन बिखिया बिखै के बहु बार बार निमखे अवगन आरे पाथर पारे हर तारे संग जनखे जिनको तुम्हार राखो स्वामी सब तिनके पाप क्रिखे जन नानक के दयाल प्रभ स्वामी तुम दुष्ट तारे हरणखे नट महला चौथा मेरे मन जप हर हर राम रंगे हर हर कृपा करी जगदीशर हर त्यायो जन पग लगे रहाओ जन्म जन्म के पूल चूक हम अब आए प्रभ शरणगे तुम शरणागत प्रतपालक स्वामी हम राखो वड पापगे तुमरी संगत हर

जो तुमरे गुण गावे स्वामी हौ बल बल बल तिन गे। पवन पवन पवित्र सब की है, जह तूर परी जन पगे। तुमरे गुण प्रभ कह ना सके हम, तुम वड वड पुरख वडगे। जन नानक कहो दया प्रभ धारो, हम सेवै तुम जन पगे। नट महला चौथा, मेरे मन जप हर हर नाम मने। जगन्नाथ कृपा प्रभ धारी, मत गुरमत नाम बने रहाओ। हर जन हर जस हर हर गायो, उपदेश गुरु गुर सुने। किलबिख नाम किलबिख पाप, नाम हर काटे जब खेत किरसान लुने। तुमरी उपमा तुम ही प्रभ जानो, हम कह ना सके हर गुने। जैसे तुम तैसे प्रभ तुम ही, गुण जानो प्रभ अपने। माया फास बंद बहु बंदे, हर जप्यो खुल खुलने। ज्यो जल कुंचर तंदुए बंदो, हर चेत्यो मुख मुखने। स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम खोजो जुग जुगने। तुमरी था पाई नहीं पावे, जन नानक के प्रभ वडने। नट महला चौथा, मेरे मन कल कीर्त हर प्रवणे। हर हर दयाल दया प्रभ धारी, लग सतगुर हर जपने रहाओ। हर तुम वड अगम गोचर स्वामी, सब त्यावै हर रुणने। जिनको तुमरे वड कटाख है, ते गुरमुख हर सिमरने। इहो पर पंच किया प्रभ स्वामी, सब जग जीवन जुगने। ज्यो सलल सलल उठे बो लहरी, मिल सलल सलल समणे। जो प्रभ किया सो तुम ही जानो, हम न जाही हर गहणे। हम बारक कौर दिवस धारो, हम करे प्रभु सिमरणे। तुम जल निधार मान सरोवर, जो सेवै सब फलने। जन नानक हर हर हर हर बांछ, हर देवो कर कृपणे। नट नारायण महला चौथा, पड़ताल एको अंकार सतगुर प्रसाद। मेरे मन सेव सफल हर काल, ले गुर पगरे नरवाल। सब दाल दुपाई दुख दाल, हर हो नदर निहाल। रहाओ हर का गृहो रे आप सवार्यो, हर रंग रंग महल बेअंत। लाल लाल हर लाल, हरे अपनी कृपा करी आप गृह आयो। हम हर की गुर की है बसीठी, हम हर देखे पई निहाल निहाल निहाल निहाल। हरे आवते की खबर गुर पाई, मन तनो आनंदो आनंद पहे। हरे आवते सुने मेरे लाल हर लाल, जन नानक हर हर मिले पहे। गलतान हाल निहाल निहाल। नट महला चौथा, मन मेरे संत संगत सुभवंती। सुनया कथ कथा सुखवंती, सब किलबिख पाप लहंती। हर हो लिखत लिखंती रहाओ। हर कीर्त कलयुग विच यूतम, मत गुरमत कथा भजंती। जिन जन सुनी मनी है जिन जन, तिस जन कै हौ कुरबानंती। हर अकथ कथा का जिन रस चाखिया, तिस जन सब पूख लहंती। नानक जन हर कथा सुन त्रिपते, जप हर हर हर होवंती। नट महला चौथा, कोई आन सुनावै हर की हर गाल। तिसको हौ बल बल बाल, सो हर जन है पल पाल। हर हो मेल निहाल रहाओ। हर का मार्ग गुरसंत बतायो, गुर चाल दिखाई हर चाल। अंतर कपट चुकावो मेरे गुर सिखो, निह कपट कमावो हर की हर काल। निहाल निहाल निहाल, ते गुर के सिख मेरे हर प्रभ पाए। जिन्ना हर प्रभ जान्यो मेरा नाल, जन नानक कहो मत हर प्रभ दीनी। हर देख निकट है दूर, निहाल निहाल निहाल निहाल। राग नट नारायण महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राम हौ क्या जाना क्या भावै, मन प्यास बहुत दर्शावै। रहाओ सोई ज्ञानी सोई जन तेरा, जिस ऊपर रुचि आवै।
ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਸੋ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਧਿਆਵੈ ਕਵਨ ਯੋਗ ਕਵਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨਾ ਕਵਨ ਗੁਨੀ ਰੀਝਾਵੈ ਸੋਈ ਜਨ ਸੋਈ ਨਿਜ ਭਗਤਾ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਰੰਗ ਲਾਵੈ ਸਾਈ ਮਤ ਸਾਈ ਬੁੱਧ ਸਿਆਣਪ ਜਿਤ ਨਿਮਖ ਨਾ ਪ੍ਰਭ ਬਿਸਰਾਵੈ ਸੰਤ ਸੰਗ ਲਗੇ ਹੋ ਸੁਖ ਪਾਇਓ ਹਰ ਗੁਣ ਸਦ ਹੀ ਗਾਵੈ ਦੇਖਿਓ ਅਚਰਜ ਮਹਾ ਮੰਗਲ ਰੂਪ ਕਿਸੇ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਸਟਾਵੈ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮੋਰਚਾ ਗੁਰ ਲਾਹਿਓ ਤੈ ਗਰਭ ਜੋਨ ਕਹਿ ਆਵੈ ਨਟ ਨਾਰਾਇਣ।